0: ऐसे ही देख लेना, तुम भी एक दिन अच्छा गाना गाने लगोगी। क्यों दीपू,
1: मुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे?
2: അവരുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ അയാൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അവളോട് പറയുന്നു. അവൾക്കും അയാളെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ അതവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല.
0: कहीं मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पीताम्बर चौधरी स्कूल के हेडमास्टर हैं और उनकी तीसरी लड़की गीता, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हालांकि उसके लिए पिछले 3 साल से लड़का ढूंढा जा रहा है।
1: तुम्हें मालूम है मेरे लिए लड़का ढूंढा जा रहा है?
0: नहीं मालूम तो नहीं, लेकिन कुछ गलत कहा मैंने?
1: बिल्कुल गलत। आखिर शादी तो मुझे करनी है, किसी और को तो नहीं।
0: मतलब तुम शादी नहीं करोगी?
1: बिल्कुल नहीं।
0: कब तक?
1: जब तक जिम्मे है। अभी तो मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा।
0: अरे डर किस बात का, मैं जो हूँ।
1: तुम क्या करोगे?
0: शादी।
1: शादी किससे?
0: जिसे डर लग रहा हो।
1: अरे डर किसको लग रहा है?
0: अरे तुमने तो अभी अभी कहा ना तुम्हें डर लग रहा है।
1: वो तो मैंने इम्तिहान के बारे में कहा था, अर्थमेटिक का पेपर मैंने बहुत बुरा किया।
0: ओ, मैंने सोचा तुम्हें शादी से डर लग रहा है। चलो ये जानकर खुशी हुई तुम्हें शादी से कोई डर नहीं।
1: हट।
2: അയാൾ അവളോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം സ്വഭാവ ഗുണത്തിലും ജോലിയിലും അയാൾ മുന്നിലാണ്. ഗീത അയാളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. അയാളുടെ പാട്ട് കേൾക്കുവാനും മറ്റുമായി സ്ഥിരമായി അവൾ ബംഗ്ലാവിലെത്തുന്നു. അയാൾ അവളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നു.